आपको भगवान के साथ जोड़ दें सो सुनते रहिए इस प्रोग्राम को साई वचन अमृत हर रविवार को सुबह 7:15 से लेके 7:45 तक ध्यान दीजिएगा आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/साई वचन अमृत ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है